0: काटिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोपराइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484-46673 र 98-14-68-02-04
10: विश्रामपछि खोज खबरमा स्वागत छ अब बाँकी खबर रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टिकापुरले चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमका लागि 193 जना किसान छनौट गरेको छ इकाईले केरा खेती सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत 71 किसान छनौट गरेको छ 60 हेक्टर क्षेत्रफललाई लक्षित गरिएको कार्यक्रमका लागि 86.6 हेक्टरको लागि माग आए पनि 84.3 हेक्टरमा केरा खेती गर्न किसान छनौट गरेको आयोजनाले जनाएको छ त्यसै मुक्त कमैया तथा दलित कृषकका लागि तरकारी च्याउ तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत 122 किसान छनौट भएका छन् उक्त कार्यक्रमका लागि 123 आवेदन परेका थिए तरकारी बिउतर्फ च्याउ तथा तरकारी खेतीसँगै उन्नत कुखुरा बंगुर बाख्रा र भैंसी पालन लगायतका कृषि गतिविधि सञ्चालन गरिने इकाईले जनाएको छ छनौट भएका किसानलाई सम्झौता गर्न आयोजनाले आवेदन गरेको आह्वान गरेको छ खोज खबरमा अब पालो जनआवाजको हिजो असोज 3 गते संविधान दिवसको दिनमा देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ आजको जनआवाजमा हामीले 2072 जारी भएको संविधानपछि परिवर्तनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं
11: जानकी पाँच मरी कृषकको महिनै जहाँ काम मेरो दुवाई घरमा उस्तै हाम्रो मजदुर कोही चिज महसुस नै मतलब महसुस नै थोरै जन्न बुझ्न मनाइन गेल त बढिया हो हाम्रो जैसे मजदुरी जन्न मनाइन गेल त कुछ नै सब चिज पहिले फेबर आस्ते आजकल फे वस्ते सदा वस्ते वस्ते रह हाम्रो उमेर मेरो टाइम टोकल मे बाधी अमिन समय ज्याला लागे अवस्था अब ज्याला लागे कि महँगी अनुसार ज्याला त नै हो महँगी हो ज्याला चाहिँ टोलेन्सी होइन चाहिँ महँगी आकाशीय भयो ज्याला कम्मा न्यूनमा एकदम कुनै म्याचिङ नै हो
12: म नाम रिता चौधरी जानकी पाँच अमौरी हाम्रो संविधान जो अहिलेस हाम्रो महिलाके लागि ढेर मजाका बाबै हाम्रो महिलाके एकचोटि आगे फे बढे पहिले आती एकचोटि महिलाके हक अधिकार फे गर्ना पहिले चाहिँ एकचोटि ढेर पाबै हाम्रो लेती फे बाटी पहिले त हाम्रो एकचोटि अपन घर से बाहर रोसिए जाए नै पाए अपन मनमे लागल बात नै धरे पाए अब अभी संविधान अलस तो हम एक घर से बाहर जाए थी को कार्यक्रम में सहभागी हुई थी ओमे अपन बात धरे पाई थी अपन और हमारे बोलना विकास हुई अभी नया संविधान आये तो
13: मोर नाम आशीष चौधरी जानकी पांच अमौरी पहले लेके अब महिला के संगठन सहभागी कह दो कई सरकार के नीति अनुसार कथे 33% महिला निभारे ना हुई पर ना पहले जैसे कार्यक्रम हुए गांव में तो महिला के सहभागी नहीं रहे उपभोक्ता समिति गठन करे बेर फिर पुरुष केल रहे हर ठाव में स्कूल में संघ संस्था में जमो पुरुषन के सहभागिता रहे अब संविधान तब से कह दो महिला के फिर सहभागी सकुठाओं में 50% जैसे तो अनिवार्य हुई जाए 33% कहल मनु सब 50% सब महिला के सहभागी रह
14: काली देवी चौधरी जानकी पांच गाँव मौरी पहले से सब चीज फायदा हुई हस लागत सब चीज महान फायदा हस लागत कह दो सब मनाई फे पहले से बहुत परिवर्तन हुई गिलाटी पहले मनाई का बुझी का नाई बुझी अब का मनाई बहुत बुझी के पड़ल ओ सब ठाव में पहले अपन परतई और बताइना फे एकदम गार हो लागे समाज में जैना फे उठाऊ एकदम गार हो लागे कुछ पद वर्ड लेना फेन एकदम गार हो लागे अब बेटो अब कोनो कार्यक्रम में जैबो कोनो संघ संस्था में जैबो तो पद वर्ड लेना फे एकदम इच्छुक जागे हस करत उठाऊ में पुग जीबो तो और कोनो बात फेन अपन मन में एकदम लाग जाए ओ पहले तो जाए तो का बटवाए कहीं का नाई बटवाए कह के कुछ अपन मन में नाई खेले अब बेटो चल जीबो कोनो ठाव तो अपन मन में ढेर बात खेलत और ढेर बात शेर फे हुई पहले से ढेर सब चीज में परिवर्तन नानल हस लागत।
10: यस्तै जनआवाजसँगै खोज खबर सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। टीकापुर बाल गृहका बाल बालिकाको शैक्षिक सुधार हुँदै आर्थिक क्षमता बढ़ाउन सुझाव। वर्षामा रोकिएको न्याउला खेल टीकापुरमा फेरि खेल्न शुरू अबदेखि हरेक साताको शनिबार खुल्ला मञ्चमा न्याउला खेलिने। संविधानले सबै नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई आगामी तीन दिन सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना कम। कृषि कार्यक्रमका लागि रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रमले छनौट गर्यो 193 स्थान। अवस्थाहरूलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर सावत विदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
15: छिछी कस्तो गनाएको इनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो के गर्ने होला घरमा पुरुष पनि छैनन्।
16: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको कोही चाहिँदैन फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा छँदै छ नि।
15: कता छ त त्यो
16: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न तुरन्त आइहाल्छ नि।
15: फोन नम्बर कति हो भाइ?
16: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620203000 हो। अर्को पनि छ 98 65 69 20 26।
17: तपाईँको पनि टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सप्पी राजापुर गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97620203000 र 98656 92026।

0: কম কম বাইছে খুব
1: ই বনো মানে জড়ি বুটি ফেমিলত
0: হাজুর জড়ি বুটি কালে কুড়িল বাই আড়িল সর্পগন্ধা অশোকগন্ধা আইসিন জড়ি বুটি কালে হামরে নিমুয়া ইসিন ফেন পরত কি কইসিন পরত মানে কমে কি নিমবা লগাইল
1: ফেন নিমুয়া ফল ফুল কুড়িল হুইল পিপলি কাকা হুই
0: পিপলি হ্যাঁ পিপলি তো ফেমিলত
1: জস্তা আপনার চাই সামুদায়িক বন সংরক্ষণ কে লাগি কৈশিক লাগল বাটি আর কাকা কপ্তি বাটি
0: আমার বন সংরক্ষণ কেলা হাইরাম ম্যাডাম কতমা কর আমার আর্থিক বিপুল কমজোর বা আঠারো ছোট মোট সামুদায়িক বন গ্যারো হেক্টর কে সামুদায়িক বন মে আমরে আর্থিক কমজোর কে ভিলে আমার ইসকুল হের চা বন হেরালু ফেন আয় বড়লে হুই রাত কে কাটর টোটা টোটা পৈঠি তো আমরা রাত কে ফেন ডিউটি লাগতি আর কেউ চারে দিন কে ফেন আমরে টাইম টাইম বন হেরতি রাখি দিন কে ফেন ডিউটি করতি রাত কে ফেন ডিউটি করকে ফের সামুদায়িক বন বতাইতি রে আস্তে কাম কিলা
1: মহিলা কলবাটি আপনা উকরা
0: হাজির আমরে মহিলা কিলবাটি 152 জানে
1: রাত কি গোস্তি আইপনা হুইল চেক জাস করা আইপনা হুইল অথবা বনো ম কুচু চোরি হুইল কলসে ফে মহিলা উকরা আপনা উকরাই থি
0: মহিলা উকরা নাই থি আর গাঁও বুদ্ধি জীবন নন থি আর প্লাস আমার তিন ঠো সলাহকার আতাই তো এনি হামরাম সঙ্গে মানে গোস্তি মানা দে থাই হামরে আই লাগতি তো
1: কতি কু চোরি নিকাশি হুইত ইহা চোরি কে সমস্যা বাকি নি হো
0: চোরি তো হুইট ম্যাডাম আমরে কাঠি করকে আমরে কাঠি ফে নাই চোরি শিখি কাঠি করকে আমরে সাঁজ হন্ধ উঠাকে গাঁও মে পুগাই থি ইসি স্থিতি বাবে
1: নাই তো চোরি হয়ে যায়
0: চোরি হয়ে যায় করল কাঠি ছোট রাট চোরি লাই
1: জস্ত আপনা উগ্র কঠুয়াফি বিতরণ করছি কালি হই না কঠুয়া বিতরণ চাই কষি কো করছি তা আনি উপভোক্তা হকন কি বর্গীকরণ করল বাকি কি নি করল হুটি
0: বর্গীকরণ তো করলে আতি ম্যাডাম মানে সামুদায়িক বন ছোট কিলে পড়ছে আমরে বর্গীকরণ কে হিসাব সে নাই দিথি আমরে বরাবর দিথি আর সূচনা কথি আমরে জব ফে বৈঠক ধরতি চাহে যম কার্যক্রম মান তো আমরে বটাইছি মানে চে জেসি কোন আমরা নিবেদন ধরতি রহ আমরে তারে উপনাই করকে যে কার নিবেদন আমরে জন মানে নাই পাইলে হই ও মানে গরহেটা দেব কইকে নিবেদন ভর ডার হো কইকে আমরে নিবেদন কে আধার সে আমরে কাঠ বিতরণ করছি কাঠি বিতরণ করছি
1: কলসে উপভোক্তা কে আবশ্যকতা কে আধার মে বিতরণ করছি আনি জস্ত অনুগমন সমিতি ফে তো হুইট উপভোক্তা কোন বিতরণ করনা সে পাইলা ই মানে আবশ্যকতা বা টিসকিনি হুইটিস কে অনুগমন ফে করছি
0: আমরি ওইসিন তো নিবেদন দেথে ওই আধার সে বিতরণ করছি
1: আনি জস্ত আপনা উগ্র আয় আর্জন সম্বন্ধি কাম করতি কে শুরু মা আপনা বটুইলি যে আয় আর্জন সম্বন্ধি কোন কোন কাম করতি
0: একটো বঙ্গুর পালন একটো বাখরা পালন আর ই কাটো গরিব মানে দেনা রুপিয়া পয়সা কাবু দিলে আটো কি নাই আমরে করলে আতি সহযোগ ই উচলন একটো লমকি সুহানগর পালিকা সে হ্যাঁ তো ক্যান্সার বিরানি হে ফে আমরে এক চিটি ডেইলি সহযোগ আর কই দো গাঁও মান ফেন একটো টটসে বেরাম রহাই তো আমরে উ মানে ফেন মানে সহযোগ করলি ফে সখাইল ফেন আতি
1: জস্তা কনা ওয়াকার সং সঙ্গ দুখি বিরাম মেন ফে সহযোগ করতি আনি সিন সামাজিক কাম কলা সে সিন সরক ওড়ক বনি বিদ্যালয় ম অসিন সিন ঠাউ ফে সহযোগ করল বাটি
0: হাজুর আমরে ই স্কুল পহিলে আমরে একটো টিচার পালি আব উ টাইম মান আমরে ঘর ঘর সে ধান উঠাতে চৌকিদার হে পালি তো আমরে গুডগাত আয় আর্জন হুয়ে তো আমরে একটো টিচার পালি পহিলে সে
1: ই বনো আয় আর্জন কা বাট পয়সা না ডগর কোন কোন বা
0: কোশ্চিন তো খাস সে নাই হো ছোট বনো বা আয় আর্জন কা নাই হে ঝিঝা মিঝা কাঠি সে হুইট আর ফে আমরে মরনি করনি মহান আধা লেকে ফে দিথি যত লেনা বা উ হিসাব সে আধা লেথি
1: আধা মফি দিথি মতলব ছুট মফি দিথি
0: ছুট মে
1: জস্তা কোন আপনা উক্র চাই কাঠি কে সঙ্গ আর চিজ জস্তা খরুর হঠুই বর্ণি বনি রহঠুই সামুদায়িক বন ভিতর কে আর কা কা চিজ বিতরণ করছি উপভোক্তা হোক না
0: কাঠি খর তো কিছু নাই রাখি ডান্ডি ডুন্ডা কাঠি ভর রহট
1: আর ই সামুদায়িক বন্ন মানে মহিলা কে লাগল বাটি আমিন মজা বনাইক লাগি এইনা দিন মে কা করনা সোচ বনাইলা বাটি
0: এইনা দিন মে হামরে পার্ক বনা পাইতি তো হামরা বরুয়ার সোচ ধরলা দি পার্ক বনা পাইতি তো হামরে এমনি পার্ক খলতি হিসাব সে তো হামরা ই ডঙ্গি সরল বা উহা হেরলি হামরে সেই হিসাব সে কর পাইতি তো আর মজা হুইত কানা মহিন মসুস হুইত সব সামুদায়িক বন হইলে করছে
1: সোচ বনাইল বাটি যোজনা ফি বনাইল বাটি
0: হাজুর যোজনা বা আমার পুরো উপভোক্তা কে সহিত আমার নির্ণয় তৈয়ার বাস
1: কাহা ইয়া পর্যটক স্থল বনাইক লাগে
0: হাজুর
1: ই বন্ন মানা
0: হাজুর
2: अनि कहाँबाट आफ्नो कै वर्ष से सामुदायिक वनकी अध्यक्ष हो के काम गर्दी अध्यक्ष महिला बिटी सामुदायिक वनकी अध्यक्ष हो के काम गर्न कत्रा सजिलो अप्ठ्यारो का बा
0: बहुत अप्ठ्यारो बा मैडम जस्तै कले से हुई सामुदायिक बनम जस्तै हम आमदानी भी सामुदायिक बनम तो नाइ भी कर रहा मैं लागत जतरा आमदानी आल जस्तै यहाँ काम लगाओ वहाँ काम लगाओ कहके वितरण करना रहत हुई मेहनत करना रहत हुई और मैंने ई सामुदायिक बन मन तो बहुत अप्ठ्यारो बा हमरे नाय रह तो का करो बिल्कुल सापट ले ले फिर काम चले थी सामुदायिक बन में छोट सामुदायिक बन हुई एक वर्ष से
2: अनि का सिखाई हुई तो अपना कुछ सीख ली
0: सामुदायिक बन में ला के बहुत अत्र बोले फिर सीख ली नहीं तो अत्र बोले फिर नहीं सीखू मैडम अत्र चल रहा है
2: जस्ता पहला कसिन रली अब कसिन मिल बाटी
0: पहले अब एक दिन जन हम थन थे बोलना बहुत अप्ठ्यारो लागे अब बोलना अठारह अप्ठ्यारो नहीं लागे तब थोड़ थोड़ बोली से एग्जैक्ट
2: कई वर्ष हुई हजूर अध्यक्ष हो गए काम करना
0: आप 75 साल से अब 83 चलता
2: लंबा समय से हम काम कर ली ना
0: हजूर दु अवधि हो गई
2: अनि उपभोक्ता हो कि साठ सहयोग चाहे कसिन बात
0: उपभोक्ता के साथ सहयोग बिल्कुल मजा बा मोर हमार समिति प्लस उपभोक्ता बहुत बढ़िया बात है हमार हमार हुई ही तो गदगद नेता ओलन हुई तो हुई ही हमारे पक्ष से नहीं तो उपभोक्ता बहुत मजा बात है
2: जस्ता महिला कल बाटी नहीं तो बनो मना है ना हजूर अध्यक्ष फिर महिला बेटी अनि और उपभोक्ता फिर सबको महिला कलवाटी बाहर के पुरुष नुकन के साथ सपोर्ट कतरा बाप न होकन के
0: बस ये बात है हमारे पुरुष के अतः साथ सहयोग नहीं देते तो हमारी सामुदायिक बंद चल जाए की का करना है लागत अब हमरे आगे हमरे नहीं थी तो साथ सहयोग तो पुरुष के देते
2: और कुछ करना बा आपने है ना
0: अब तो लागल आती निका बढ़िया से सब कुन के हिसाब से अस्थि आई जाए मदद से सब कोई मन ही कले से तो अभिन एक अवधि का दूसरा अवधि से बैठे पाऊं कहके हटू
2: मतलब साथ सपोर्ट कर रही थी सामुदायिक बना कुर मजा बनाई सही
0: सोच तो ढेर सोच ले आती मैडम अब का करते हैं अब गाँव हमारे उपभोक्ता का करते हैं प्लस हमारे समिति वालन ऐसी हुई तो मैंने ऊपर से बनाना स्वस्थ कर लिया आगे बढ़ेगा सब
2: सोच लाटी समय दिली अपना ड्यूटी धन्यवाद बा
0: धन्यवाद मैडम
3: महिला मात्र भएको सामुदायिक वनमा महिलाहरू सामुदायिक वन संरक्षणमा सक्रिय भएर लागेका छन् वनले हरेक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा कार्य समितिबाट छलफल र निर्णय गरेर मात्र आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ सामुदायिक वनका अन्य पदाधिकारी पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने गरेका छन् वनका उपाध्यक्ष प्यारी देवी चौधरी
4: हाम्रो पहिले सुरु त मैडम हाम्रो हर महिना हाम्रो चार गते समिति एक बैठक फेनाए झुक के बैठक करती ओ जाके अध्यक्ष नाय रहल बेलमन चाहे जौन चीज फे मोर मार फटफिट नया अध्यक्ष कहूँ चल जी थे तो ऊ ठाव में मैं पुगठू और जस्ते यहाँ नाय रहते तो ई ठाव में फे मई ऊ कार्यक्रम है चलेठू और जस्ते के पहले हमरे चाहे जोन बात फे हमरे समिति में धरती तब समिति से ऊ बात फेनाई हुई तो हमरे जाके कह दो सलाहकार है बोले थी तब सलाहकार से फेनाई हुई तो हमरे पूरा गाँव को भक्तन जुटे थी तब वो भक्तन जुटा के तो कह दे वो निर्णय है हमरे पूरा छल फल करके पूरा हमरे निर्णय करती वो बात है तब जहाँ पुगैना रह तो बात है पुगई थी नहीं यही करना रह तो बात है यही करती
2: कलश अपना होकर अपन अपन जिम्मेवारी अनुसार लागल बाटी
4: लागल आती मैडम बेढब लागल आती
2: अनि कतरा अप्ठ्यारो बाट सामुदायिक बनोमा काम करना
4: अब अप्ठ्यारो कले तो अप्ठ्यारो फिर अप्ठ्यारो मैडम और कले से ही बनो में लागल पर पहले बहुत मनाई हूँ कन अपन अनुहार फे चिन्ह सेकले आती और बहुत जहन के अनुहार फे चिन्ह सेकले आती और जाके बोलना फे अत्र कह दो प्रगति फे हमार हुई बा ई बनो में छोट रले से फेन हमार बोलना ढेर प्रगति हुई बा ओ मनाइन से बोले सेकना फे ढेर क्षमता हुई बा ओ मनाइन के अनुहार चिन्ह सेकना फे ढेर क्षमता हुई बा और जाके कह दो मैडम हमरे ये अपन घर ओटरा हमरे अपन घर के काम फैनाए वास्ते करके ई बनो में हमरे बिल्कुल आठ दिन खटल रखी जहाँ हमरे बनो काम हुई जाती एक दिन पता काफी हुई जाए तो हमरे अपन घर के काम छोड़ के अपन बुढ़े बुढ़न के लड़ना भिड़ना छोड़ के फिर यहाँ लड़ल भिड़ल रखी बनो में लड़ल भिड़ल रखी अपन घर के काम हस
2: जस्तो कना अब अठारह संरक्षण मसी का लागल बाटी महिला कल बाटी है ना का बा और जहन फिर का कहना चाहती अपने
4: अब मने जस्ते कुन भी बनवा तो सबके हो मैडम वही फिर चाहिए तो वही फिर मने बने से कि आओ कहीं हमरे कठी हमारे के बनो नाई हो मने हमारे हस करो कहके सकु जन के बनो हो पाले पालो सकु जाने करे पाई कहके मने कठी आती और सधाम सभा कनिका से कमी कमजोरी हुई बटो कह दे मने अब कह दे सुनाय लखनाती एक चुटी सावन भादो उत्तर गिल कह दे अब मने सुनाय लक एक चुटी कागज पर किरे गिर बटो अब मने सुनाई न पड़ते तैयार आती बढ़े चलता नहीं तो सब चीज कह दे
1: अपना उपाय अच्छे हुई थी
4: हजूर हमारे सबको काम फिर एकदम मिल के करती महिला महिला आती मने कह दे मिल के चाहे रात के हुई चाहे दिन के अब सदान सबक फिर एक छुट्टी बिल्कुल तैयारी आती कह दे सुनाई न महन
1: संरक्षण में लागल बाटी अपने
4: लागल आती मैडम
1: और धन फिर लागे कहती
4: हाँ और धन फिर लागे कहती
3: वनलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रशासनिक कामलाई व्यवस्थापन गर्न अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि सामुदायिक वनले गरिरहेको छ। वनका सचिव रीता चौधरी
0: आर्थिक आमदानी नाइ हो के कुल अप्ठ्यारो भावै अब हाम्रो यहाँ त्यो जुन काम गरे बाजी अप्ठ्यारो पर्छ समय इसके साथ देना यो करना अब सचिव काम करबो तो फिर फुट कर लागत अब पहिले तो तालिम दे हाम्रो तालिम थे नाइ पहिले सचिव बनली तो कैसे का करे निर्णय हुई प्रस्ताव आए तो निर्णय लिखना भी करा पड़ेगा हंस कर अब मैंने करत करत बहुत सीख गिलाती आगे समझी गिलाती
1: अन्य तो सामुदायिक बन के प्रशासनिक काम मजा बनाए कसी करती निर्णय प्रक्रिया कसी करती का करती
0: ई प्रशासनिक काम करे लाग हमरे सब कुछ समिति के सदस्य के बैठ के प्रस्ताव नथी प्रस्ताव के निर्णय लिख थी निर्णय लिख के सब हम सुनाई थी सुना सुने के तब कौन चीज के प्रस्ताव न लाती ओकर बारे में सकुन जानकारी करा के तब हम जो भी अनुसार से तब सामुदायिक बना है आगे बढ़ती थी काम करती बैठी
1: कलसी सब कुछ चीज चाहे लिखित रूप में निर्णय करती
0: सब कुछ चीज हमने लिखित निर्णय करती जैसे अब बाहर चिट्ठी पत्र देना रहा तो फिर हमारे हाथ से लिख के तब जाके टाइपिंग करे थी सब कुछ हाँ लिख के संभव नहीं भी लगा तो हमने टाइपिंग करा के तब जाके बाहर चिट्ठी पत्र पठे थी
1: जस्ता क्यू सहयोग करना विल कुछ चंदा उंडा मांगा अगिल से ऊ बेला कसी करती था
0: ऊ बेला फिर हमने सब कुछ समिति में बोला के सलाह करके उन्हें निर्णय लिख थी कौन ठाव से का चीज के समस्या बाटी तो वही अनुसार से तब जाके हमने चंदा उंडा दी थी
1: लिखित रूप में अनि सामुदायिक बन्नु मन मजा बनाएक लागि और का करती बाटी त
0: हाम्रो त अब धेरै काम करती बाटी अनि पहिले अब ई बन्नु फे बुड बिरथे अत्र घना फे नै रहे यहाँसे उहाँसे यहाँ देख मनै देखाए अब हाम्रो अपन रात दिन मेहनत करके फे अपन घर के काम छोड़ के अपन घर के काम करे हाँ हाम्रो ई बन्नु में लागलाटी इहिन से हाम्रो पहिले कैसे रहे आप कैसे मिल आप सकु उपभोक्ता के कठै पहिले बन्नु एकचोटि गिरती जाए थे आप चाहिए आगे बढ़ाता रहिए करें वस्ते के हमरे आप काम करती रह और हम इनसे किसी के आगे बढ़ाए तो इनसे आगे हमरे किसी के बढ़ाव करना अभी सोच बनाई थी बैठी
1: अन्य और कुछ करना बा हजुर है ना
0: हमरे ये सामुदायिक बना किसी के आगे बढ़ाए और यदि कोनो कोई संघ संस्था ये जो हमार लेखा संबंधी तालीम वालीम दे दे लगाते तो आप मजा राहत करना रहे अब हम एक तो तालीम फैनाई पहली अब अपन जैसे अपन दिमाग से करना की कहा से अब धरती आती लेखा का लेखा संबंधी फिर काम करती बटी अभी सब कोनो चीज के कंप्लेन करना चाहना है लो भाई
1: कल से अब अपना उकरा तालीम वालीम पैटी तो आउ सजिलो होने
0: रहा आउ सजिलो होने रहा तालीम पहले बटी तो
1: लेखा संबंधी निर्णय लेखा संबंधी ली ठीक बा समय डेली अपना धीरे धीरे धन्यवाद बा
0: हजुर पे धीरे से धीरे धन्यवाद बा हमरे अपन आवाज ई हमरो बन कार्यक्रम में दे पहली हजुर पे धीरे से धीरे धन्यवाद बा और हमार जतरा उपभोक्ता हम के आते हैं हमन साथ सपोर्ट करती रही और हमरे ई बनो और यहीं से आगे और आगे बढ़े चीज आप कही के विश्वास करती
3: वनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि वनले हरेक गतिविधिमा क्रियाकलापमा खर्च गर्दा बैंक मार्फत गर्ने र साधारण सभामा तोकिए अनुसारको खर्च गर्ने काम गर्ने गरेको छ। वनका कोषाध्यक्ष आशा चौधरी
1: सामुदायिक वनके कोषाध्यक्ष हो काम गर्न सजिलो वा कि अप्ठ्यारो वा
4: आर्थिक रहेछ त सजिलो वा मेरो आर्थिक नै रह त समयमा अप्ठ्यारो वा है जस्तै कि अध्यक्ष अपनी और हमार बनो कह दो कुछ कार्यक्रम हो जाए तो हमारे आर्थिक नहीं रहते तो टाइम में कहाँ से जुटाए कैसे करे अब कार्यक्रम स्थगित कर दी करना बातें नहीं रहते ना अब जस्ते कि हमरे समिति बोला उपाध्यक्ष अध्यक्ष निकबू सचिव से अब आज हमारे आर्थिक नहीं हो तो वो आर्थिक हमरे जैसे की व्यवस्था करके फिर वो कार्यक्रम हमरे नहीं छोड़ती जहाँ देना रहा तो बनो काम लेके फिर वहाँ जैसे की पुख्ती पाछे नहीं पड़ती जहाँ से खबर आया था वहाँ से जैसे की आर्थिक रहे ना रहे वो ठाव में आर्थिक नहीं होकर हमरे वंचित नहीं हुई थी मनुष्य आर्थिक नहीं होकर ढेर समस्या पड़ा
1: आर्थिक तो नहीं हो कली कोसा अध्यक्ष व्यवस्थापन कसी करती बाटी आर्थिक क्रियाकलाप कैसी संचालन करती
4: अब आर्थिक कल ऐसी है छोट मोट बनो हो मैडम तो यह कब कब झिझा मिझा काठी वठी रह तो कब कब यह भोज काज के लगनी काज के रेख लग डेले रखी तो वह गोट गट आर्थिक आयल रह तो फिर हम बैंक मार्फत काम करती बैंक में धरती
1: जस्ता खर्च कर पड़ना हुई कि कर पड़ना हुई तो कसी करती
4: अब गोट गट तो कोष में फिर धरले रखी मैडम जमा नहीं रहती बैंक में 4-5 हजार रूपए कोष में रह कोष चलाई लगा यहाँ उहर कहूँ आवत जावत करना हुई कहूँ सहयोग करना हुई गेल कब कब कहूँ से संघ संस्था से पहुना हो आई थी तो पानी उनी बॉय करना संस्था खवाए लगना कब तो वह धर ले रखी 4-5 हजार रूपए कोष में
1: मतलब कोष में तो धर ले रखी खर्चा कसी कर थी
4: अब खर्चा कर ले से अब वह जस्ते आवत जावत करना हुई थी ना जैसे कहूँ जाना हुई तो सब वह भरपाई अनुसार जस्ते खर्चा हुई तो समय दिन मिट्टी खर्चा
1: लाइन जस्ता कने जी मन लागत वो मनी खर्चा कैले ठीक ही कसी कर थी कलक
4: नहीं वैसी नहीं कर थी मैडम अब जस्ते के काम परी तो खर्चा कर नहीं तो नहीं मन का मानी तो नहीं कर थी खर्चा
1: कहल के मतलब की हजूर का लिखित रूप में छलफल कही के कर थी की कसी का वो रूपया खर्च कर थी कलक
4: अब वैसी के ढेर खर्च करना था तो जाता बनैना रह लेबर ओबर लगेना है तो निर्णय कर थी ये उचित बनैना बा कांटे तार लगा अपनी वन विकास के काम कर बोर्ड जीरो लगा कहके तो निर्णय कर ले रखी और यहाँ आवत जावत करना है तो कर निर्णय नहीं रहा कस्ती के 100-200 रूपए लागत तो कर भरपाई बना के काम कर
1: पहला छुट्टियां रखी हजूरों का
4: हाँ ये साधारण सभा से पास कर ले रखी साधारण सभा से पास करके खर्चा करती है पहले ही कर ले रखी निर्णय और जैसे ऑडिट रिपोर्ट करे फिर गड्डू निर्णय करल रहा और धनगढ़ी जाना टीकापुर जाना सब साधारण सभा मन से पास करके वही अनुसार से खर्चा करती
1: अनि का बाट सामुदायिक वनों में संरक्षण के लागि तार बार बार कर लाटी
4: तार बार करल बड़ा बोर्ड बीरो लगाई थी और अच्छी पर गेट बनाई ले रही है तो गेट तो अभी खाने पानी काम से पहले बनाए थे खाए उजरल बाड़े ले आते और जैसे छोट छोट आमदानी कब कब तो यह काम से खर्च कर देती
1: कल से प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण फिर करती
4: प्रत्येक वर्ष हमारे वृक्षारोपण कार्यक्रम करती वन विकास के लग बोर्ड बीरो लगाई थी
3: कार्यक्रममा पालो अब एक रिपोर्ट सामुदायिक वनले वन पैदावारसँगै उपभोक्ताको आय आर्जनमा सहयोग गर्ने गरेको छ सामुदायिक वनले उपभोक्ताको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बंगुरको पाठा वितरण बाख्रा वितरण अति विपन्न उपभोक्तालाई दाउरा वितरणमा सहयोग औषधि उपचार खर्चमा सहयोग लगायतको काम गर्ने गरेको छ सामुदायिक वनका अध्यक्ष फूलपति देवी चौधरी
0: एकठो बंगुर पालन एकठो बाख्रा पालन एकठो लम्की सुधनगरपालिका से तो कैंसर बिरानी है फिर हमरे एक चिटी डेली सहयोग कई दो गांव मन फिर एक तो जस से बिराम रहे तो हमरे उमने फिर मने सहयोग कर ली फिर तो खाल फिर आते हमरे ये स्कूल पहले हमरे एक तो टीचर पाली अब उस टाइम मन हमरे घर घर से धान उठा के सब किदार है पाली तो हमरे गुजरात आय आर्जन हुई है तो हमरे एक तो टीचर पाली पहले से
3: सामुदायिक वन बाटा आय आर्जन में सहयोग पाए पछि उपभोक्ता पनि खुशी भएका छन् लक्ष्मी देवी चौधरीलाई सामुदायिक वनबाट बाख्रा पाएपछि बाख्रा पालन गरेर घर खर्च चलाउन औषधि उपचार गर्नमा सहयोग पुगेको छ
5: सागरी पहिले सरप नहीं रहे सरप लेना फायदा हुई साबुन लेना फायदा हुई लाओ बिरामी हुई ना तो बिरामी दवाई करेना तो इसका फायदा हुई घर खर्च चलाता
3: सामुदायिक वनबाट बाख्रा पालन का लागि बाख्राको पाठा पाएको प्यारी चौधरीलाई पनि बाख्रा पालन गरेपछि घर खर्चमा सहयोग मिल्नुका साथै बाल बच्चा पढाउनमा सजिलो भएको छ
6: छग्री फैलाथे फाइदा त हुन्छ घर चलैन लड्का पढाइन अब एक ठोटो पठारो नै रोकेर रुपियाँ दिनु अब एक ठो भावै पठिया औ दाई
3: कार्यक्रममा पालो अब जनआवाजको आजको जनआवाजमा सामुदायिक वनबाट तपाईँले के सेवा पाउनुभयो भनी केही उपभोक्तालाई सोधेका छौं।
7: म नवराम प्यारी देवी चौधरी हो, जानकी पाँच अमौली, शिव पार्वती सामुदायिक वनको कहिले उपभोक्ता हो। हामीले काठी पाटा पैठना रहटो मिझा गोटगाट घर चलैना पनि झेल ढोका बनाएकन रथिन टोका ठोडे ठाई है झेल ढोका बनाएकन घर भर गोटगाट रहटो झिझा काठी पैठी आओ काट के लिए तो अब अपने बनो नुकसान है ना नहीं कट मने मने इनके काटल लोटल रहते है झिझा मिझा दौरा कह दे है मने झाला पाता लगी।
8: नमस्कार, मोर एक नाम शर्मिला चौधरी, जीविक उपार्जन के लस बक्सा दे लाते बुंगुर के भी पाले पाले बाबे तो बुंगुर के भी पालो ना आयल और अस्ते मर निकल निकल खुल ठोरे बाबे कठो कागज मर निकल निकल दौरा फिर मिल जाए और कबू जब अब छोट मोट बनो हुई कारण से सकून तो एक सीते पटाख लगा के काछी देना से गारो पड़े कबू जब अपर घर में पड़ जाए दौरा ना रह तो घर में दौरा फिर मिलत के पड़े।
9: नमस्कार, सकून मोर नाम मीना देवी चौधरी हो, हमरे काठी डेट है घर बनाए नकलक हुई तो झाल ढोकलक करी फिर डेट है कहे हस और फिर सहबी तो घास से डेट है और झाला से दिन लग फिर डेट है। हम यात्रा सेवा सुविधा पैती आती हम अलग बनवा तो कल से बढ़े हो बनवा हम अलग बनो ना है तो हमें यात्रा सेवा सुविधा ना पैती।
3: हवस् त आजलाई कार्यक्रम हाम्रो वन यति नै, अर्को साता आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौ। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक मित्र आकाश चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै म गीता पनि विदा हुन्छु। नमस्कार।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: चर्पी भर्गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल सेपे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बाक सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौपन थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालयको अनुरोध जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सड़क किनारमा पशु चौपाया नबान्न र सड़क किनारमा मल वस्तु नथुपार्न अनुरोध गर्दछौ साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधेर ढुङ्गा बालुवा माटो ग्राभेल मल थुपारेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी थुपार्ने व्यक्तिले लिनुपर्नेछ जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लायकपुर

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोजखर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फे सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टिकापुर बाल गृह के बाल बालिका उपकरण शैक्षिक सुधार हुईटी आर्थिक क्षमता बढ़ेना सुझाव। कृषि कार्यक्रम के लख रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के कृषि ओर के कार्यक्रम छनौट में 193 किसान। बर्खा में रोक गेल न्योला खेल टिकापुर में फिर से खेलना शुरू। अब से हरेक साता के शनिचर के दिन खुला मंच में न्योला खेल जिना। वो आगामी 3 दिन सुदूरपश्चिम में भारी वर्षा के संभावना कम। आप पूरा खबर सीमाविहीन स्वयंसेवक संस्था उत्तिकापुर बाल गृह के सामाजिक परीक्षण करगिल बा 25 जाने बाल बालिका हुक्रा आवासीय रूप में प्रतिरलक टिकापुर बाल गृह के आधारभूत पुस्तक पूर्वाधार लकमा बाल बालिका हुक्रण की सिखाई उपलब्धि सुधार हुई गेल देख गिलवा आपने भवन पूर्वाधार रलक सीमाविहीन संस्था है एवीएसएफ इटाली के आर्थिक सहयोग करते रहलवा बाल गृह में बैठना बाल बालिका हुक्रण के उपलब्धि मजा हुई गैलक बा एलकेजी से लेके कक्षा 3 सम के विद्यार्थी हुक्रण प्रथम द्वितीय स्थान हासिल करती बाट अतिरिक्त क्रियाकलाप में फे प्रगति हुई गई देख पड़ल बा कर्णाली मावि टिकापुर के सहायक प्रधानाध्यापक शिक्षिका तारा साउद बाल गृह के बाल बालिका हुक्रण अन्य बाल बालिका से फे अनुशासित आज्ञाकारी पढ़ाई में मजा देख पड़ल बटोले बाट सामाजिक परीक्षक एकेन्द्र तिमिलसेना से प्रतिवेदन प्रस्तुत करती बाल गृह के बाल बालिका हुक्रण के लाख 3,24,766 रूपया के अक्षय कोष तैयार हुई जानकारी दिले बाट विद्यार्थी हुक्रण व्यवस्थित रेकर्ड धरके स्वास्थ्य जांच पुस्तक आंखी जांच तथा स्वास्थ्य उपचार हुई रहल बा संस्था के प्रशासनिक सुधार हुई रहलक एक वर्ष में बैठना समेत 10 बैठक से सकु निर्णय कार्यान्वयन हुईला को वार्षिक समेत 45,83,000 रूपया के आय व्यय पारित करगिलवा आर्थिक वर्ष 2082-83 में 36,56,200 के लेखा परीक्षण हुई रह बाल गृह में उज्यालो के लाख बैटरी इन्वर्टर नहीं रलक पुस्तक प्रिंटर फ्रिज नहीं रलक झ्याल ढोका मरमत कर पर्ने अवस्था देख गिलवा कलसे संस्था के विधान संशोधन में आय स्रोत वृद्धि हुईना काम खासे नहीं हुईला को और सरकारी निकाय हुकन संगे समन्वय के काम में खासे प्रगति नहीं देख गिल बा उसका का सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम में टिकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वाड़ा अध्यक्ष मोहन लोहार विकास आगे सामाजिक परीक्षण में अत्यावश्यक मानगिल भान्सा घर के लाख बजेट विनियोजन कल बटोले बाट वाड़ा अध्यक्ष बीका बाल गृह में अत्यावश्यक काम करना संस्थागत रूप में प्रस्ताव आयलमा नगरपालिका से सहयोग होना बटोले बाट महिला बाल बालिका शाखा प्रमुख संगीता शाह हिंसा में पर्ला को उद्धार कर पर्ना बाल बालिका हुक्रण छोट अवधि में केलक बाल गृह से आवास देलक में धन्यवाद देले बाट छात्र छात्रा एकठो बाल गृह में रलक ओर से कौन समस्या आए नई देना चनाक हुई पर्ना बटोले बाट संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष बालकृष्ण चौधरी घरहीमा बाल बालिका हुक्रा सुरक्षित नहीं रलक अवस्था में बाल गृह में रहल बाल बालिका हुक्रण फिर जोखिम से बचैना बाल गृह के कर्मचारी हुक्रा विद्यालय आउ जाऊ करना हो बाल गृह में बैठती रलक अवस्था में सुरक्षा देह पर्ना बटोले बाट वहां कार्य समिति के सदस्य हुक्रण फे समेत अभिभावकीय भूमिका रहना अनुरोध करला बाट बाल गृह के निर्देशक जनक बहादुर महर्षि बाल गृह में बैठल बाल बालिका हुक्रण के पढ़ाई के गुणस्तर और आवास में गुणस्तर दोनों आवश्यक रलक ओर से अत्यावश्यक वस्तु पूरा करे पर्ना प्रतिबद्धता व्यक्त करती सहयोग के लख अपील करले बाट टिकापुर आंखी अस्पताल के इंचार्ज कमल साउट से ठेर बाल बालिका हुकरन के भविष्य सुनिश्चित करलकमा धन्यवाद देलेबाट संस्था से 36,56,000 के सम्पत्ति रलक बाकलसे 129 जाने समुदाय में रलक विपन्न बाल बालिका हुकरन पोशाक स्टेशनरी लगायत के सहयोग कार्यक्रम रहल बाकलसे संस्था के 64 जाने सदस्य रहल बाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्टा नेपाल के संविधान से जनता के सर्वोच्चता कायम करती सकु नागरिक अधिकार सुनिश्चित करलक बटैले बाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से आयोजन करलक संविधान दिवस के मूल समारोह हे समेतकालिक संबोधन करती मुख्यमंत्री भट्टा से संविधान से नेपाल के सकु जात जाति भाषा धर्म और संस्कृति मान्य पर्ना अधिकार नागरिक के अधिकार सुनिश्चित करलक बटोले बाट। वहां नेपाल के संविधान लोकतांत्रिक पद्धति के विकास दस्तावेज रलक उल्लेख करती तमाम मत उपचार के बीच सहमति धरना राजनीतिक आधार के रूप में संविधान ले पर्ण धारणा व्यक्त करल बाट। मुख्यमंत्री भट्टा से संविधान के मर्म और भावना अनुसार सकु प्रकार के राजनीतिक सहमति कायम करती मुलुक के अग्रगमन के डगरामा आगे बढ़ाई पर्ना अब के आवश्यकता रहल बटोले बाट। वहां संविधान से प्रत्याभूत करलाक अधिकार के संरक्षण कार्यान्वयन करती लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता तथा समावेशी व्यवस्था हे थप सुदृढ़ बनाई पर्नामा जोर देले बाट। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पाछ फेर सैबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम।
1: आँखाका रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आँखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आँखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आँखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
3: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
2: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
2: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: टिकापुरमा कालीसे नेउला खेल शुरू करगिल बा। टिकापुर सांस्कृतिक समाजकै आयोजनामा कालीसे नेउला खेल शुरू करगिल हो। विगत 6 वर्ष से लैके टिकापुर के खुला मंच के पुरान हाट बजारमा हरेक शनिचर के संचालन हुइतेल नेउला खेल के समेत बरसात के समयमा रोकगिल रह। वर्षा लागल पाछे असारमा शान्तासम से लेके भदौ मशान्तसम 2 महिना नेउला खेल रोकगिलो। कालसे फेर नेउला खेल शुरू करगिल टिकापुर सांस्कृतिक समाज के सचिव बलबहादुर बोहरा जानकारी दिले बाट। अब से हरेक हप्ता के शनिचर नेउला खेल संचालन समेत हुइना रलक ओर से खेल प्रेमी हुकरन उपस्थित केलाक फे सचिव बोहरा आग्रह करल बाट। कर्णाली मावि टिकापुरमा कक्षा 12 के विद्यार्थी हुकरा एक कार्यक्रम के बीच कक्षा 11 के लव आगन्तुक विद्यार्थी हुकरन स्वागत करगिल बा। काली एक कार्यक्रम के आयोजन करके नवागंतुक विद्यार्थीकरण स्वागत करगिले खो कार्यक्रम कक्षा एघार में प्रतिरलक छात्र गुंजना खत्री से आपन भविष्य निर्माण के जिम्मा शिक्षक ओ विद्यार्थी परिवार हुकरण सुम्पलो कर्णाली मावी मा आपन सुनौलो भविष्य के कल्पना करके अपना आयल बटोले बाटै वहां अपना चाहल अनुसार के वातावरण विद्यालय में पैलक में संतुष्टि जनाइल बाटै विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा एसई परीक्षा जारी समेत आपन भविष्य के समेत खोजीकर्ती भविष्य निर्माण केलक कर्णाली मावी टीकापुर छनौट करना रदाकोर्से कक्षा एघार में अध्ययनरत विद्यार्थी है धन्यवाद देती स्वागत कर गिलक हो वहां विद्यार्थी उपकरण के भविष्य निर्माण के लाग सकु विद्यालय परिवार एक हो के लगना हो विद्यार्थी उपकरण के विश्वास टूट नहीं देना प्रतिबद्धता जनाइले बाटै कार्यक्रम में बोलती शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष रतन बहादुर तमता से विद्यालय कलक नई ज्ञान और सीप आर्जन करना ठाव रलाकोर्से विद्यालय में अनुशासित होके काम करना आग्रह करल बाटै वहां विद्यार्थी उपकरण के ओकर परिवार हो विद्यालय संगे जोरगेला कोर से विद्यार्थी उपकरण के शिक्षण सिखाई हो और शैक्षिक आवश्यकता के लाग सबको टीम तैयार रलक विद्यार्थी उपकरण मन लगा के पढ़ना अनुरोध कर बाटे कक्षा बारह में अध्ययनरत छात्रा ममता निपानी के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष रतन बहादुर तमत्ता प्रमुख अतिथि रहल रहे कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य लक्ष्मी चौधरी मावी के इन्चार्ज हरीश अवस्थी निमावी के इन्चार्ज नारायण प्रसाद ढुंगाना शिक्षक रेणु रेग्मी पूर्णविख विद्यार्थी प्रेम ढिटाल लगायत से बोल रहे कार्यक्रम संचालन कक्षा बारह के विद्यार्थी नेहा उपाध्याय रोशनी जोशी कर रहे कार्यक्रम में विद्यार्थी से गीत नृत्य फे प्रस्तुत कर रहे हाल देशभर मानसूनी वायु के साथ पश्चिमी वायु के फे आंशिक प्रभाव बा मानसून के न्यूनचापीय रेखा कलक भर सरदर स्थान के दक्षिण ओर रहलबा हाल देशभर साधारणतया मौसम बदललबा मधेश बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दुई ठाव में मेघगर्जन सहित के हल्का वर्षा मध्यम वर्षा रहलबा आज दोपहर के देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना तथा तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलना बा कोसी बागमती गंडकी और कर्णाली प्रदेश के हिमाली भूभाग के ढेर स्थान में तथा लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में एक दो स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम खाल के वर्षा और हिमपात के संभावना बा कोसी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में कम स्थान तथा कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्ना संभावना बा खोज फर्मा फैन से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता
0: उपचार होइटी रहल बा।
8: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। रानी जमरा कुलरिया शिक्षा आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर से चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 में संचालन होना कृषि कार्यक्रम के लाख 193 किसान छनौट मपरल इकाई से केरा खेती सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत 61 किसान छनौट मपरल के हो। 60 हेक्टर क्षेत्रफल में लक्षित करके कार्यक्रम के लाख 86.6 हेक्टर के लाख माग अहिले से फेन 84.3 हेक्टर में केरा खेती करना किसान हुकरण छनौट करल आयोजना से जनायल बा। मुक्त कमैया तथा दलित कृषक हुकरण के लाख तरकारी च्याव तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत 122 किसान छनौट में परल बाटे। कार्यक्रम के लाख 123 थो आवेदन परल बा। तरकारी ओर च्याव तथा तरकारी खेती संगे उन्नत मुर्गी पालन बंगुर हस्तगत छेगरी और भैंसी पालन लगायत के कृषि गतिविधि संचालन करना इकाई से जनायल बा। छनौट हुई किसान हुकरण समझौता करना आयोजना से आह्वान करल बा। यह समाचार संगे खोज खबर आयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर में बाल गृह में बाल बालिका हुकरण के शैक्षिक सुधार हुई आर्थिक क्षमता बढ़ेना सुझाव। कृषि कार्यक्रम के लक रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के कृषि कार्यक्रम के छनौट करल 193 किसान। बर्खा में रूक गलत न्यौला खेल टीकापुर में फिर से खेलना शुरू। अब से हरेक साता के शनिचर के दिन खुला मंच में न्यौला खेल दिना। वो आगामी 3 दिन सुदूर पश्चिम में भारी वर्षा की संभावना कम। लिटा बकलत थारू भाषक खोज खबर त्रय और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते भी राम राम।
9: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
10: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जांच करने स्थान आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर। टाड़ा का बिरामी ले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्ने छ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टीकापुर में अब देखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। संपर्क फोन नंबर 9868-80-0008 र 9825-63-77-72।

0: बुका पी रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाव से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चुप।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलाली को भक्तजन का लागि सूचना।
4: श्री गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलाली को आयोजना में भदौ 30 गति देखि असोज 5 गति सम्म संचालन हुने श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम 2083 भव्य तथा सभ्य रूप में सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण भक्तजनहरुको गरिमामय उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
3: श्री गणेश उत्सव का कार्यक्रमहरु भोटेको सीमा आएको बाढीबाट ज्यान गुमाएका र सम्पर्क विहीनको लागि हरेक दिन शान्ति पाठ हुने
4: विद्यालय स्तरीय नृत्य कार्यक्रम,
3: हरेक दिन भजन कीर्तन र नृत्य कार्यक्रम,
4: हरेक दिन बिहान योग कार्यक्रम,
3: विसर्जन कार्यक्रम असोज 5 गते बेलुका 5 बजे।
4: आयोजक श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम मूल समिति टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 नारायणपुर चौराहा कैलाली।
5: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, दंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: बुका पिएर कबु पेन्सिले रहेछ कबु झनै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा के ओस्ता बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो ये बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: अरेला सुन चांदी पसल में छड़की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेंडल बाला औंठी चंद्रमा कांटा नौगेड़ी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गर गहना अर्डर करे अनुसार सुपट मूल्य में बनाइन्छन् एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिनुहोला
4: अरेला सुन चांदी पसल बलभद्र चौक टीकापुर एलएन मेडिकल अगाड़ी संचालक खुमराज सुनार संपर्क मोबाइल नंबर 98102537
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
2: महीन
0: राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98 6 00 71 0 24 98 0 46 77 400 17

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: दाई बेड भूक लगता खाजा बाकी नहीं ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी
5: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो से अकल बाजे आप हली भुआस कर दिए परल है समय में भुआस कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरीना और जनक बात फे सुननी पड़ना
6: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर दे का मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाहे ये बाल विवाह करन नी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी
7: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से डायो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर उ हिंसा के शिकार बन सकर उही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस उ रोजगार फिर नहीं पाए ओ गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकर ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
8: टीकापुर नगर पालिका ओडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।

0: कुका पिए रहीठा कभी पेन्सिल रहीठा कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस तबातीन गतिलो ठाउं से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लबाती ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बातीन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
1: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860477।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आदि था, का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हेरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई, कब्बू लड़का कॉपी हेरा कही था, कब्बू पेंसिल हेरा कही था, कब्बू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनो कन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सा हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो में फेसुन्टी रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कैलाली के टीकापुर में विपट में बाल बालिका के संरक्षण में सरोकारवाला हुकन के भूमिका विषय छलफल तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम रसुआ के सुरूंग में काम कलक टीकापुर जानकी के नागरिक के पारिश्रमिक वितरण टीकापुर चार ओडा संजाल और थारू व्यापार संघ टीकापुर से रसुआ बाड़ी प्रभावित के परिवार में राहत वितरण ओ जापान में हुईना बीसौ एशिया लीग खेलकूद के क्रिकेट में नेपाल पहिलचोट सेमी फाइनल में पुग्न लक्ष्य। आप खोज खबर विस्तार में बालापन के रक्षा भविष्य के सुरक्षा का नारा के संग कैलाली के टीकापुर में विपट में बाल बालिका के संरक्षण में सरोकारवाला के भूमिका विषय छलफल तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम हिलवा कार्यक्रम में बाल क्लब बाल संजाल के पदाधिकारी स्थानीय पालिका टीकापुर भजनी नगरपालिका जानकी और जोशीपुर गांवपालिका के स्थानीय पालिका के विपट व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारी महिला बाल बालिका शाखा विपट शाखा के कर्मचारी शिक्षक तथा सरोकारवाला हुकन के सहभागी कार्यक्रम में सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी सीडीसी के बाल अधिकार संयोजक एकराज बडुल विपद के बेला बाल बालिका विभिन्न खाले जोखिम में परसेकना हुईला कुर्से बाल बालिका के सुरक्षा व पुनस्थापना मन कसिक का काम करसेकजैट कना उद्देश्य लेके कार्यक्रम कलक बटुला वहां सुदूरपश्चिम 18 वर्ष तरके बालिका के स्थिति थाहा पाइक लगी प्रदेश सरकार से समन्वय कर बाल बालिका के स्थिति पत्र प्रकाशित कर लगलग बटुला प्रदेश प्रहरी कार्यालय के तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2081-82 मन सुदूरपश्चिम विपद के कारण 17 जना बाल बालिका के ज्यान गेल बा कलश 19 जना बाल बालिका घाइते हुईला को 2 जना बाल बालिका बेपत्ता हुईलवा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली के सभापति लोकराज जोशी विपद व्यवस्थापन के लागि संघीय कानून तथा नीतिगत व्यवस्था तैयार रहलक बटोटी विपद व्यवस्थापन राहत देकन रकम देक कल नि हुईना हुईला कुहर्से विपद व्यवस्थापन जोखिम हस्तांतरण कर्क कलक हुईना हुईला कुहर्से उही में काम करपना बटुलाट वहां गैर प्राकृतिक प्राकृतिक विपत्ति से जोखिम निम्तना हुईला कुहर्से विद्यालय में हुईलक प्रकोप पहचान कैक न्यूनीकरण में काम करपना में जोर देलबाट जोशी के अनुसार विपद के कारण गैलक 10 वर्ष में 14,569 जना के ज्यान गैलबा। रसुआ के सुरूंग में काम कलक टीकापुर के नागरिक के पारिश्रमिक वितरण कई गिल्बा रसुआ के भोटीकृषी बाढ़ी पाछा टीकापुर जानकी ओ बर्दिया में कुछ नागरिक घर घुमलक ओ कुछ नागरिक बेपट्टा रहलक उहरसे हुकहन के पारिश्रमिक यहां से हुकहन काम मनलई जिना ठेकेदार तुलाराम चौधरी कंपनी से बुझक लान के टीकापुर ओडा नंबर 1 के ओडा अध्यक्ष मोहन बिक के रोहरबर में पीड़ित के परिवार हन बुझेलबाट तुलाराम टीकापुर ओ बर्दिया के 47 जना कामदार के पारिश्रमिक 18,76,573 रूपया आपन खाता में कंपनी जमा कर देलक डांचे काम करलक हफे महीना भरिक पारिश्रमिक देलक उहरसे बुझेलक बटुलाबाट कंपनी कामदार के पुरान पारिश्रमिक को भदौ महीना के 10 गते सम्म कलक काम कलक हुईल से फे पूरे महीना के पारिश्रमिक पठैलबा टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 1 के वडा अध्यक्ष मोहन बिक अब कामदार के पारिश्रमिक कलक उपलब्ध हुईलक बाढ़ी में हेरैटी रलक हुकन के खोजी कार्य आम्ही जारी रहलक ओर से सांस या लास के खोजी हुई तिरलक राहत तथा क्षतिपूर्ति के प्रक्रिया सरकार शुरू करलक बटुलाबाट वडा अध्यक्ष बिक ई विपत्ति के समय मन आपन संभाल व परिवार संभाल अनुरोध करती स्थानीय सरकार आपन नागरिक के पीड़ा मन साथ में रहलक बटुलाबाट बाढ़ी पाछा टीकापुर नगरपालिका के 25 जना की गांवपालिका के 4 जना आमीन संपर्क भीनबाट टीकापुर नगरपालिका ओडा नंबर 4 के टोल विकास संस्था ओडा संजाल भोटेकोशी बाढ़ी से बेपत्ता हुईलक परिवार हन आर्थिक सहयोग प्रदान कलबा ओडा संजाल के अध्यक्ष गीता कुंवर के समय जग तोम हुईलक राहत संकलन से 80,161 रूपया बाढ़ी से बेपत्ता हुईलक परिवार हन सहयोग कर गिलक हो। टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 4 के वड़ा अध्यक्ष लालवीर चौधरी मार्फत टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 समितिपुर के बरघर अखिल थारूहन हस्तांतरण करगिलबा ऊ रकम नगरपालिका भीतर के रसुआ बाढ़ी में बेपत्ता हुईलक 25 परिवार हन दामाशाही के हिसाब से वितरण करगिलक ओडा अध्यक्ष चौधरी बटुलबाट। वहां विपत्ति के समय में ओडा संजाल से करगिलक सहयोग एकदम महत्वपूर्ण रहलक बटवेटी स्थानीय सरकार फे आवश्यक सहयोग करना प्रतिबद्धता व्यक्त करलबाट। ओडा अध्यक्ष चौधरी के अनुसार ओडा के 15 टोल विकास संस्था से संकलन करगिलक रकम हस्तांतरण करगिलक हो। थारू व्यापार संघ टीकापुर रसुआबाड़ी प्रभावित के परिवार हां राहत वितरण करलबा। टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के बीज जहना परिवार हन 30,000 राहत वितरण करगिलक हो। रसुआ में काम कर गैलक आवश्यक संपर्क में नहीं ऐलक बीज जना के परिवार हां जन ही 1,500 के दर लेकर राहत वितरण करगिलक थारू व्यापार संघ टीकापुर के अध्यक्ष गोपाल चौधरी जानकारी देलबाट। घर के कमैना मनै संपर्क विहीन हुईलपा छ हुकन डांचे हुईल से फे सराहाट हुआए कैखन कुछ व्यापारी हुकन से रकम संकलन कैक राहत वितरण करगिलक आगामी दिन में फे सहयोग रहना अध्यक्ष चौधरी बटुलबा। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्ति रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह अपना भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
4: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड्न नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
5: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: सोच खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नेपाल डिजिटल रूपान्तरण प्रविधिके विस्तार सरकारी सेवाके आधुनिकरण ओ कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा कलक सीमित निकर्क विपद तथा संकटके समयमा समेत नागरिक हुकन निरन्तर सेवा सूचना ओ संचार उपलब्ध कराई सेक्नाकै दिगो एवं उत्थानशील डिजिटल प्रणालीके निर्माणमा जोड़ देलबाट आईसीटी फाउण्डेशन नेपालसे आज आयोजित डिजिटल नेपाल कन्फ्लेक्स 2026 सम्बोधन कर्ती संचार मन्त्री तिमल सिन्हा रसुवा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा अहिलेक विनाशकारी बाढ़ी से जनधन समुदाय व भौतिक पूर्वाधारमा पुगा गेलक क्षति के संग नेपाल के सूचना प्रणाली संचार सञ्जाल संस्थागत समन्वय व राष्ट्रीय तयारी के समेत परीक्षण करलक उल्लेख करलबाट वहाँ पाछक वर्षमा नै डिजिटल रूपान्तरण मुख्यत सुविधा दक्षता ओ आधुनिकरण से जोड़ कहियार करगिल खुला से फे हाले के विपट अनुभव से डिजिटल प्रणाली के निरंतरता विश्वसनीयता व संकट प्रतिकारी क्षमता न सम्मान प्राथमिकता दिएपना आवश्यकता देखैलक बटुलबाट वहाँ रसुआ भोटेकोशी में अलग बाढ़ी से भारे मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगैलक उल्लेख करती विपद व्यवस्थापन में सरकार उद्धार राहत पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण लगायत के काम प्राथमिकता के संग आग बहती रलक बटुलबाट विपद के क्रम में प्राप्त अनुभव से भौतिक पूर्वाधार के संरक्षण के संग सूचना तथा संचार मंत्रालय के सुदृढ़ीकरण हन राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आग बढ़ाए पटना देखा गिलक वहां के कहा रह। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सत्र पथरी स्थित शिवगंगा लड्यामन पक्की पुल निहोक स्थानीय बासिन्दा वर्षौं दिन से शास्ति भोक्तियालबाट दान्छे दूरीके सड़क से धनगढ़ी बजार तथा वड़ा नम्बर 16 व 17 आवत जावत कर लड्या पार करपना हुईल सेफे पुल निहुबेर स्थानीय वैकल्पिक डगर वा डलप के भर पर्ना बाध्यता रहलबा। धनगढ़ी के विभिन्न ओड़ा तथा अन्य क्षेत्र से ओड़ा नम्बर 16 व 17 प्रवेश करना नागरिक शिवगंगा लड्डेक सामना करपना अवस्थाबा विशेष कई का धार्मिक तथा पर्यटक स्थल के रूप में रहलक श्री बेड़हा बाबा मंदिर जैना भक्तजन हुक्र समेत यह लड्डा पार करपना रहत आस्था के केन्द्र के रूप में रहलक बेड़हा बाबा मंदिर में नियमित रूप में भारी संख्या में भक्तजन पुग्ना करलसेफे लड्डा में पुल निहुबेर हुक्र आवत जावत में थप समस्या व खर्च व्यवहार पना स्थानीय के गुनासोबा पुल के अभाव में लद्या वार पार कर आब डलप अर्थात डलप के सहारा लिहपना अवस्थाबा डलप से लद्या पार करल बाफट प्रति व्यक्ति 30 रूपया व मोटरसाइकिल के 100 रूपया शुल्क तिरपना स्थानीय हुक्र बटुलबाट मंदिर दर्शन के लागि जैना भक्तजन ऐना जैना दुईचो शुल्क तिरबे थप आर्थिक भार परल परलबा लड्या पार्कना क्रम जोखिम समेत ओत्रह रहलक स्थानीय के कहाइबा लड्या मना पानी के बहाव बहरल बेला डलप से वार पार करना झन जोखिम हुईना कलक हुक्र बटुलबाट यद्यपि पुल निर्माण निहिलसम्म आफ्न हुक्र डलप संचालन करक नागरिक वार पार करैती रलक डलप संचालक बटुलबाट यीसे स्थानीय कुश मनै रोजगारी समेत पाइलबाट धनगढ़ीके जखौर ताल हुईटी बेडहा बाबा मन्दिर जैना सड़क कालोपत्रे होस्याकल्बा तर शिवगंगा लड्यामन पुल निमिवेर सड़क पूर्वाधार जोर्गिल सेफे आवत जावट सहज हुई सेक्लक देख जाइट स्थानीय के अनुसार सड़क मजा हुईल सेफे लद्यामा पुल निमिवेर यात्रा के बीच मन अवरोटना करलबा। कंचनपुर से भंसार छली के बीडी व सुरोट बरामद करगिलबा कंचनपुर के कृष्णपुर नगरपालिका 5 वन देवी जंगल लघसे अवैध रूप में भारत से भंसार छली कर नलक अंदाजी मूल्य 48,350 रूपया बराबर के बीड़ी चुरोट प्लास्टिक झिल्ली लगायत के सामान इलाका प्रहरी कार्यालय गुलहरिया कंचनपुर से खटगिलक प्रहरी के टोली बेवारी से अवस्था में फेला पार्कना आवश्यक प्रक्रिया पूरा करकला नियंत्रण में लेलबा। खोज खबर में फेरफे विश्राम विश्राम पाछ ऐनेनी बाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
6: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा कर तू फिर ओस्ट बनी हो ना ओट फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
10: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
11: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
10: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
11: त्यसो भए आजै जाउँला नि
10: ल अरूलाई पनि भनौँ है
11: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
10: सिर्जना सुन चाँदी पसल तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी
11: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 9805943893
12: नेपालगंज मेडिकल कलेज भाग कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
13: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार का दिन
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
12: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
14: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
13: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
15: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा जापानमा हुन विशौं एसियाली खेलकुदके क्रिकेटमा नेपाल पहिलो सेमी फाइनलमा पुग्न लक्ष्य धरलबा समूह नेपाल समूह ए मन अफगानिस्तान जापान से बा एक जीत से क्वार्टर फाइनल पुग्न सम्भावना बलगर हुयाबा नेपाल अबसम्म एसियाली खेलकुद क्रिकेटमा 3 चो सेमी फाइनलसम्मकै यात्रा कलहक करलबा एसियाली खेलकुदके क्रिकेट मञ्चमा बारम्बार क्वार्टर फाइनल के तागरा पार करनी सेक्लक नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली इहेजो इतिहास बदलती लवो अध्याय लेखना दीर्घ संकल्प के साथ जापानमा हुन विशौं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुइतिबा विगतमा 3 संस्करणमा क्वार्टर फाइनल से आघ बढ़नी सेक्लक नियतिह तोर्ती नेपाल इहेचो कम्तीमा सेमी फाइनल यात्रा तय कैक ऐतिहासिक पदकके ढोका उघर्न स्पष्ट लक्ष्य बनाइलबा सिंगापुरमा सम्पन्न एसियाली खेलकुद छनौट प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्कन मुख्य प्रतियोगिता मन स्थान पक्का कलक नेपाल इहेचो समूह एक मनबा नेपालकै समूहमा एसियाली क्रिकेटकै शक्ति राष्ट्र अफगानिस्तान हो आयोजक जापान रहलबा समूहकै सकुनसे चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वन्दी अफगानिस्तान अब विश्व क्रिकेटकै स्थापित टोलीकै रूपमा चिन्जायत नेपाली टोली एसियाडकै मञ्चमा अफगानिस्तान से ठिक 12 वर्ष पाछ रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धाको लगलग हो यसै आग सन् 2014कै एसियाली खेलकुदकै क्वार्टर फाइनलकै सँग उहो वर्ष बंगलादेशमा आयोजित टी20 विश्वकपकन यी दुई टोली आम्ने सामने हुइल रह यह समाचार के संग खोज खबर हो रहा अंतिम जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से कैलालीकै टीकापुरमा विपदमा बाल बालिकाकै संरक्षणमा सरोकारवालाकै भूमिका विषय छलफल तथा अन्तर्क्रिया, रसुवाकै सुरुङमा कामकलक टीकापुर र जानकीकै नागरिकै पारिश्रमिक वितरण, टीकापुर चार वडा सञ्जालो थारू व्यापार संघ टीकापुर से रसुवा बाढ़ी प्रभावितकै परिवारमा राहत वितरण, जापानमा हुइना बीसौं एसियाली खेलकुदकै क्रिकेटमा नेपाल पहिलो सेमी फाइनलमा पुग्न लक्ष्य, लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्रह और समाचार छ बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सेकबी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी यहाँ धन्यवाद देती मई गीता फी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम।
16: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
17: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
16: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा संचालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
18: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
18: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
6: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
18: अब त म ढुक्क।
19: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरा पारी, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
6: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरा पारी, टीकापुर, कैलाली।
20: कागजात हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टीकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा बुझाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 9764627090 र 9815607605।
21: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: दाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नहीं। ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाई भारी हो से अकल बाजे आप हली भुआस कर दिए परल है समय में भुआस कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना।
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पढ़ना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाहे बाल विवाह कर नी चाहू ई बाल विवाह नी करन दीदी।
3: शारीरिक व मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत उ हिंसा के शिकार बन सकत वही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से बेगिलक जनहित में जारी संदेश।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर नगर पालिका को सूचना,
4: टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनौ।
3: नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन।
4: कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो,
3: त्यसैले कर तिरौ सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिऊ,
4: समयमै कर तिरौ जरिवानाबाट बचौ।
3: कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 091-560-883 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: गहना नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गर गहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्य में बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: आरएनला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडी संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

राजन परीक्षित श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद प्रिय व्रत नाम मेरे को राजा का छोरा तेरा भाई मध्य में जेठा छोरा आग्नेद्र ने तपायामी बस को ठाव में राज्य कर आग्नेद्र नाम मेरे को राजा को अब इस किसिम राज्य संचालन पक्ष में नौवटा छोरा जन्म न गो सरकार नौवटा छोरा मध्य में नौ भाई ने राज्य को अभिलाषालाई कायम राख तैयारी भे लौ तो नौ भाई जम्मूद्वीप को नौ खंड में विभाजन कर दी बक्सु राजा ने पहिलो खंड को नाम हो अज नाम नाम खंड दोस्रो किम पुरुष तेस्रो हरिवर्ष चारो इलाव्रत पांचो रम्यक छैटो हिरण्यमय सातो कुरु आठो भद्रासुर नौ केतुमाल नाम गरेको खंड हुन गयो सरकार त्यसमा नौवटा खंड में नौ भाई को नाम ने प्रख्यात भएर राखिएको छ जिसमध्ये में तपाई हामी बसेको ठाउँ चाहिँ मध्य भूमंडल रेखा में पर्छ जिसको जब भूमध्य भाग में यस किसिमबाट रहेको जसको नाम हो सुन्दर शहर सुन्दर नगरी सुन्दर स्थान अजनाब नाम गरेको खण्ड त्यो अजनाब नाम गरेको खण्डमा नाभि राजाले राज्य गर्नुभयो वहां नाभि राजालाई राज्य सम्पा गरेर राजा आग्नेद्र जंगल सवारी हुनुभयो उहाँले नि केही लानु भएन प्रेव्रतले सात दिन छोड़े केही लगेनन् आग्नेद्र नाम गरेका राजाले पनि केही लगेनन् आग्नेद्रका छोरा नाभिले संतानोत्पादन करना को निमित्त भगवान नारायण वासुदेव को प्रार्थना कर नाभि नामर का राजा तन मनुभो नाभि राजा ले बड़ो प्रेम साथ विनती गर्नुभो बड़ो आनंद को साथ में ध्यान भो मनन भो कीर्तन भो नाभि नामर का राजा नाभि राजा का छोरा खन महाराज संतान नौना को कारण भगवान को प्रार्थना करे श्याम सुंदर भगवान गर्छौं उपकार।